कहो नानक गुरु खोए परम, एको अल्लह पार ब्रह्म, राम कलि महला मंजवा, कोट जन्म के बिन से पाप, हर हर जपत नाही संताप, गुर के चरण कमल मन बसे, महा बिगार मानते सब नसे, गोपाल को जस गाओ प्राणी, अखत कथा साची प्रपूर्ण, ज्योति ज्योत समाणी राओ, कृष्णा पूक सब नासी, संत प्रसाद जपया विनासी, रैन दिनस प्रभ सेव कमाणी, हर मिलने की एह निशानी, मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल, गुर का दर्शन देख निहाल, परा पुरबला करम बन आया, हर के गुण नित रसन गाया, हर के संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान, दास की रेण पाए जे कोए, नानक तिस की परम गत होए, राम कली महला बजवा, दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय धर ध्यान, तुर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस पेटत मिटे अभिमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूरन भगवान राओ, गुर की कीरत जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुन गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे न व्यापे तिस न पूक, मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोविंद पढ़ दे सब काजे, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर दाता दयाल भगसंद, गुर चरनी जा कामन लागा, नानक दास तिस पूरन पागा, राम कली महला बनवा, किस परवा से बिचरे पवन, मूड मुगत तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नहीं जाने, पंच बटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत, गुन गोविंद रविये दिन राती, साध संकर मन की प्रीत राहो, जन्म बियान अहंकार अरवाद, त्रिपत नावे बिखिया साध, परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाए दूतर माया, कामना आवे सो कार कमावे, आप भी जावे ही कावे, राखन को दूसर नहीं कोए, तो निस तरे जो कृपा होए, पतित पुनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को दी जय दान, अपने दास को की जय दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, शरण गई नानक प्रभ तेरी, राम कली महला मंजवा, ऐ लोके सुख पाया, नहीं पेट तरम राया, हर दर गए सो बावंत, फुन गर्भ नहीं बसंत, जानी संत की मित्राई, कर कृपा दीनो हर नामा, पूरब संजोग मिलाई रहाओ, गुर के चरण चित लागा, तन तन संजोग सभागा, संत की तूर लागी मेरे माथे, किलबिक दुख सगले मेरे लाते, साध की साच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध परानी, जन का सफल दर्श डीठा, नाम प्रभु का कट कट बूठा, मिटाने सब कल कलेस, जिस ते उपजा तिस माय प्रवेश, प्रगटे अनूप गोविंद, प्रभ पूरे नानक बकसंद, राम कली महला मंजवा, गौ को चारे सार धूल, कौड़ी का लक हुआ मूल, बकरी को हस्ती प्रतिपाले, अपना प्रभ नदर निहाले, कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे, बरन नसा को बगुन तेरे राव, ईसत दीसत मास न खाए बिलाई, महाकसाब चोरी सट पाई, करणहार प्रभ हृदय बूठा, फाथी मछली का जाल टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अगन निवारी सत गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, अकीर्त कना का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक शरणाई, राम कली महला बंजवा, पंज सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी लई निवार,
तीन आवर्त की चूकी केर सा संग चुके पैवेर सिमर सिमर जीवा गोविंद कर कृपा रखियो दास अपना सदा सदा साचा बक्सेंद राव दाज गए त्रिन पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रपैर अनद रूप प्रकट्यो सब थान प्रेम भगत जोरी सुखमान सागर तरयो बाछ रखोज खेद न पायो नै फुन रोज सिंध समायो कटके माए कर्ण हार को किछ अचरज नाहे जो छूटो तो जाए प्याल जो काढ़ो तो नदर निहाल पाप पुन हमरे वस नाहे रसक रसक नानक गुन गाए राम कली महला बंजवा नातन तेरा नामन तोहे माया मोह ब्या प्या तोहे कुदम करे गाडर ज्यो छेल अचिंत जाल काल चक्र भेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साच तना रहाओ उन्हें काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे विकार जियरे के ताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तो अनिक छल जाने कौड़ी कौड़ी को खाक सिर छाने जिंदिया तिसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार पार ब्रह्म जप पहे दयाल एमन होवा सादर वाल हस कमल लड़ लीनो लाए नानक साचे साच समाए राम कली महला मजवा राजा राम की सरनाई निरपो पे गोविंद गुन गावत साध संग दुख जाई राव जाके राम बसे मन माही सो जन दूतर पेखद नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम अर सन्नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर पूरे सो दास देसा काहे करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुरु ऊपर कुर्बान गुरु परमेश्वर पेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पाप्रम जिस कृपा करे सा संग सो पवजल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मुखु जल साचे दरबारे अनद करो तज सगल विकार नानक हर जप उतरे पार राम कली महला बनवा ईंधन ते बैसंतर पागे माटी को जल दै दिस त्यागे ऊपर चरण तले आकाश कट में सिंध की ओ पर गास ऐसा समृत हर जियो आप निमक न बिसरे जी भगतन के आठ पहर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैल किनो साबुन सूद पैते निरपो डरता फिरे होंदी को अनहोंदी हिरे देही गुपत बिदेही दीसे सगले साज करत जगदीसे ठगन हार अन ठगदा ठागे बिन वक्खर फिर उठ लागे संत सभा मिल करो बखियान सिमरत सासत बेद पुराण ब्रह्म विचार बिचारे कोए नानक ताकी परम गत होए राम कली महला बंजवा ज्योतिष पावे सो थिया सदा सदा हर की सरनाई प्रभि नाही आन बिया राव पुत्र कलत्र लखमी दीसे इनमें किचु न संग लिया बिखेठ गोरी खाए पुलाना माया मंदर ता त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगुता गर्भ जोन में किरत पया पूर्व कमाने छोड़े नाही जमतूत ग्रास्यो महा पया बोले झूठ कमावे अवरा त्रिसन न बूझे बहुत हया असाद रोग उपजा संत दुखन देह बिनासी महा खया जिने निवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म मया राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा न जाई राव दर्शन पेखत हो निहाल जाकी तूर काटे जमजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कारज सवारे सगले तन गे जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाद
पतितु धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत देह जिस दान, तजय विकार बिन से अभिमान। एक त्याइए साध के संग, पाप बिना से नाम के रंग। गुरु परमेश्वर सगल विनाश, कट कट रवर आगुनतास। दर्श दे तारो प्रभयास, नित नानक चित वे सच अरदास। राग राम कली महला मंजवा, कर दूजा दोपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइये। आवा गौन मिटे मेरे मींद, राव गुण गावत होवत परगास। चरण कमल मैं होए निवास, संत संगत मैं होए उधार। नानक पव जल उतर बार, राम कली महला मंजवा। गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले। सगल बिना से रोग कुरा, राव एक राधो साचा सोई। जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख। हर सिमरत बिन से सब दुख, सहज आनंद करो मेरे पाई। गुरपूरे सब चिंत मिटाई, आठ पैर प्रभु का जप जाप।

சத்குரு பிரசாத நர் நரே நமஸ்காரங் ஜலன் தலன் பஸ்த ககன் ஏக ஏகங்காரங் ரஹோ ஹரன் தரன் புன் புனே கரன் ஹேங்கிரே நிரஹாரங் கம்பீர தீர்நாம் ஹீர ஊச்ச மூச்ச பாரங் கரன் கேல குண மூல நானக பலிஹாரங் ராம் கலி மஹல்லா மஞ்சுவா ரூபரங் சுகந்த போக தியாக ஜலே மாயா சலே கன காமினி ரஹோ பண்டார தரப் அரப் கரப் பேக லீலா மன் சதாரே நே சங்க காமினி சூத கலத்ர பிராத்மீத உர்ஜ பரயோ பரமயோ ஏ பிரக சாமினி சரண் கமல சரண் நானக் சுக் சந்தன் பாவனி ஏக் ஓங்கார சத்குரு பிரசாத ராக ராம் கலி மஹலா நோமா திபதே ரே மன ஓட்லே ஹர நாமா ஜாக்கே சிம்ரன் துர்மத நாசே பாவே பத நிர்பானா ராவ் बड पागी ते जन को जानो जो हर के गुन गावे जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे अजामल को अंत काल में नारायण सुधाई जागत को जोगी सर्वाचत सोगत छिन में पाई नाहिन गुन नाहिन कछ विद्या तरम कौन गज की ना नानक बिरद राम का देखो अबे दान तें दीना राम कली महला नवा साधो कौन जुगत अब कीजे जाते दुर्मत सगल विनाशे राम पगद मन बीजे राव मन माया में उर्ज रहो है बुझे न गच ज्ञाना कछु ज्ञाना कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाणा पे दयाल कृपाल संत जन तब है बात बताई सर्प धर्म मानो तय किया जय प्रभ कीरत गाई राम नाम नर निस्बासर में निमक एक उतारे जम को त्रास मिटे नानक तय अपनो जन्म सवारे राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुधले छिन छिन अवध कटे निस्बासर बिरथा जात ए दे राव तरनापो बिखियन से खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पे अजियो नहीं समझे कौन कुमत उर जाना मानस जन्म दियो जय ठाकुर सो तय क्यों बिसरायो मुकत होत नर जाके सिमरे निमक नाता को गायो माया को मद कहाँ करत है संग न का हो जाई नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद सोई चांद चढ़े से तारे सोई दिन रतपत रहे सातरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले था व कैसे जीवन तलब निवार होए परवाना करे ध्याना कल लखन विचार राव किते देश न आया सुनिया तीर सुनिए तीरथ पास न बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार न बैठा जे को सूत करे सोची जे तप कर तप न होई जे को नाउ लय बदनावी कल के लखन एही जिस सिकदारी तिसे कुवारी चाकर के हे डरना जा सिकदारे पवे जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आइये तै झुके रा रहा तबावस जे गुण दे न बाये राव कल कल वाली सरा निवेड़ी काजी कृष्णा हुआ बानी ब्रह्मा वेद अथर्वण करने की रद लया पत बिन पूजा सत बिन संजम जत बिन काहे संजने हो ना वो तो वो तिलक चढ़ावो सूच बिन सोच न होई कल परवान कतेब कुरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाउ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले बड़ियाई ए दू ऊपर करम नहीं जे कर होंदे मंगन जाइए फिर ओलामा मिले तही राम कली महला बैला जग पर बोदे मड़ी बदावे आसन त्याग काहे सच पावे ममता मोह का मन हितकारी ना औदूते ना संसारी जोगी बैस रहो दुविधा दुख पागे कर कर मांगत लाज न लागे राव।

सिमट पायो शंकर काठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाया चंभाओ आजुगा स्वरूप से अम्भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारा सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकम ले करो रण काता जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जौन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

आई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता केल विक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को शय करता श्री तुज भय।

देह मो कोट कृष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस क्रोर जलेस दोरा राम कथा जग जग अटल सब कोई भाखत नेत सुरग बा सुरग बर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै विष्ण भगत किए फल होई आद ब्याद छव सकै न कोई संबद 1755 हाड़ वदी प्रथम सुखदावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परे लह लिह उदा सुधारा दोहरा भूल परी लह लिह सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तर सतद्रव तीर्थ रंग

मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहराम तो होई, सतगुर सज्जन मिले।

हो जाता है, फिर ना मूआ फिर नहीं मरता है। वो आत्मावां सदीव काल अविनाशी दे विच समा जांदियां ने, अविनाशी हो जांदियां। कल कलेसा दुख हरे, कलयुग दे कल लड़ाई झगड़िया दे काम क्रोध लो मोह हंकार करके जो कलेश ने, कलयुग दे विच कलेश ने दुख हरे, सारे दुख उन्हां दे हरे नाश हो जांदे ने। हर दिते ने बाणी ने, हर सरन पाई तज ना जाई, प्रभ प्रीत मन तन भाणी। सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, बाणी दा असर की होया। हर सरन पाई तज ना जाई, जदों हिरदे दा नाम प्रगट हो जांदा है, हिरदे दे विच भी सहज धुनिया आत्मिक रस आ, वाहिगुरु दा नाम है, अनहद नाद है, ते बाहरों शब्द बाणी नूं सुन नाल भी अंदर प्रवेश हुंदा है, शब्द गाउण नाल भी प्रवेश हुंदा है, मन तन निहाल हुंदा है। तां ही कहा बाणी नूं गावो, बाणी नूं सुनो। सच्चे पातशाह जी ने कहा शब्द ने ही अंदर दे शब्द नूं सांझ पा के ते सो प्रगट कर देना अनहद नाद नूं, होर कोई हीला वसीला नहीं है, इहो ही है। बिनवंत हर सरन पाई तज ना जाई, फिर अंदर दा नाम दा रस प्रगट हो जाता, तो हरी वाहिगुरु की शरण हिरद्यों पा लैंदा, मन करके पा लैंदा, तज ना जाई फिर वह छड़ी नहीं जाती है, निमग्न हो जाता ना, रस पैदा हो जाता, वह फिर छड़ी नहीं जाती, अंतरमुख बिरती हो जाती गुरमुखां दी। प्रभ प्रीत मन तन भाणी, फिर प्रभु दे नाल साची प्रीत जिहड़ी है मन ते तन नूं भा जांदी है, लगन एक रस लग जांदी है, फिर नहीं वह टुटदी, फिर मन होर पासे नहीं जांदा, सब भुखां लै जांदियां ने रसां कसां दियां। बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी। पहला क्या सुन ते हुण क्या गाईए सदा, फिर इहदा भाव यह है भी फिर गाई जांदी अपने आप ही, जदों अंदरों रस पैदा हो जाता है, फिर शब्द की ध्वनि निकलती है, फिर बाणी गाई जाती है, फिर धनवाद ही उहदा शुकर ही, बाणी दे शब्द जिहड़े भी मूँह ते चढ़े हुंदे ने फिर वही गाई जाते। बिनवंत नानक सदा गाई है, फिर सदा ही गाई दी है बाणी, होर कोई गल नहीं हुंदी। तां ही कहा सी गुरमुख नूं, गुरमुख की अवस्था गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहा समाई, समाया रहिंदा उहदे च बिरती करके जुड़िया रहिंदा, शब्द ही सुनदा शब्द ही गाउंदा वा। जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ज्ञान। बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी, ये फिर सदा ही पवित्र आ जो अमृत काल तो रहत कर देन वाली मिठी बाणी फिर गाई जाती है। रब दे प्यारे इतों तक भी आया वो महात्मा महात्मा हो जांदियां ने जिहड़ियां सुते पए भी बाणी गाउंदे, बाणी पढ़दे सुने गए ने गुरमुख सुते पए भी बरड़ा के भी, सदा ही गाई जाती है। जिन्हां दी अवस्था बन जाती है उठद्या बहिंद्या सौंद्या खांद्या पींद्या चलद्या तुरद्या फिरद्या करद्या, सो ये उन्हां दी कार बन जाती है। उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन कै सदका, उठत बैठ सोवत त्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है। आप जी दे बचन ने सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, गुरु की बाणी नाल जुड़िए, बाणी दे नितनेम विच परपक होइए, बाणी पढ़िए बाणी सुनीए एकागर चित नाल, तां ही हिरदे विच प्रवेश, हिरदे विच प्रवेश होण ते फिर ही खेड बननी। सतगुरु कृपा करन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 542वें पहले प्रकाश दिहाड़े दे संबंध विच गुरु घर विखे श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश ने कल नूं भोग पैणगे, सो इन्नियां बेनतियां आप संगत ने प्रवान करनियां। आओ गुरमुखां दी रसना तो नाम सिमरन गुरमत विचारां नाल जुड़िए, दो पंगतियां पढ़ के फतेह प्रवान करनी जी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पहुंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पिही सच नानक होसी पिही सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरी आ पार सहस सियाण पा लख हो हे ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटा पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहे आजाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्म नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी सिक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कह न कोए गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाणै नीसान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथीना आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या भाव अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानके वै जानी है सबापे सचियार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनी है मन रखी है भाव दुख पर हर सो कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया सुमाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिर ठोपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चलै सब कोए चंगा नाव रखाए कै जा सुकीरत जग ले जे तिस नदर ना वई तवात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर स्वरनाथ सुनै तरत तबल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईश्वर ब्रह्माइंद सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अड़सठ का स्नान सुनै पढ़ पढ़ पाव है मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गाह सुनै सेख पीर पाते साह सुनै अंधे पाव है राहो सुनै हाथो वै सगाहो
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਮੰਨੈ ਮੋਹੇ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ।

जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबीर बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दा रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो, सुखी बसै मोर परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदा करी, सब बैरन कवाज संघरी है, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे बरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हूजो सदा हमारे पछा, श्री अस तुझ जू करी हो रक्षा। अच्छा।

माला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दया खै लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची साला सच्च

0: विस्मात पौन विस्मात पाणी विस्मात अग्निखी डेविडाणी विस्मात धरती विस्मात खाणी विस्मात साध लगे प्राणी विस्मात संजो विस्मात विजो विस्मात पुकस्मात भोग विस्मात विस्मात सला विस्मात उजड़ विस्मात रा विस्मात नेड़ा विस्मात दूर विस्मात देखे आज रा हजूर वेख नान्या विस्मात नानक बुजन पूरे भाग माला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाव सुखसार कुदरत पातालिया कासे कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कतिबा कुदरत सर्व विचार

कार सत्य मन संतोख उपजा देने कै विचार दे दे मंगे से सगुना सुख करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा कर बावे कार एक होंदा खले खाए चले था तन।

नानकंत पाए कै संभाले सवन जिन करते करना की चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस जुआरी स्वस्थ तिस तिस दिवान।

पौड़ी नानक अंतन जापनी हरता के पारावार आप कराए साक्षी प्रिय आप कराए मार एक नगरी चंजीरी एक तुरी चढ़े बसे आप कराए करे आप हो कैसे करे पुकार नानक करना जिनकी आप

का सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कुवाटड़ी एकस सौ चित लाए दूजै पावी नानका वहन लड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जाड़िया सच वखर जिनी लदया से

चंपक के नामा गौराव काना कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सांबिल श्री राघव गाव है पंचो संग बरंगन लाव है बैरारे करनाटी धरी गवरी गाव है आसावरी तेह पाछ सिंधवी आलापी श्री राग सिंह पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राघव गाव पांचों संग बरंगन लाव है सूरठ गोंड मलारी।

तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे सुन आए सिद्ध पीर सुरनाथ सुन आए तरत तवल आकाश सुन आए दीप लो पाताल सुन आए पोहे न सकै काल नानक भगता असदा विगास सुन आए दुख पाप का नास सुन आए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुन आए मुख सलाहन मंद सुन आए जोग जुगत तन भेद सुन आए सासत सुमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुन आए दुख पाप का नास सुन आए सतसंतोख ज्ञान सुन आए अठ सठ का स्नान सुन आए पढ़ पढ़ पावे मान सुन आए लग सह ध्यान नानक भगता सदा विगास

भाग उत्तम पद पायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास भगत उत्तर आयो तुर की बाणी आई तिन सगली चिंता मिटाई दया

सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल में घट घट नानक माजा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल में घट घट नानक माजा। वाहिगुरु जी का खालसा,

निमख सिमरत जित छूटा, कर्म धर्म पाखंड जो दिशा, तिन जाम जागति लूटा।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावै, हर पाया प्रभ अविनाशी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया,

श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता सरसुमहत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरी आईया वाचे धर्म दूर करमिया पोया पुनी के नेड़े के दूर जिनी नाम तिहाया।

ना हो, जो एक दृष्टा जेकर आखन मिठो चाहो, दाता करता आपको सेवे करे पसाओ, तू जानो सब से दे लैस जिंद तो करे आखन मिठो चाहो।

तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख रोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सब सच्ची साला।

विस्तमय सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा हो, तिसकी कटिया जम की फासा हो, पार ब्रह्म की जिस मन भूख हो, नानक तिसन लागे दुख है। जिसको हर प्रभ मन चितिया वै, सो सन सोहेला नहीं डलावै, जिस प्रभ अपना कृपा कराए, सो सेवक को किसते डराए। जैसा सत्या सा दृष्टाया, अपने कार्य में है आप समाया। सोदत सीजियां, गुर प्रसाद तत सब बुझियां, जब देखो तब सब कुछ मोल, नानक सो सुखम सोई असूल। नह किछ जन्मै नह किछ मराए, अपन चलते आप ही कराए। आवन जावन दृष्टि अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रच थाप थाप। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धारे हो ब्रह्मांड, अलख भे पुरख प्रताप, आप जबायता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो शोभा बंत, सगल संसार उदरैतन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेलाए कृपालो, गुर का शब्द जपनो निहाल। मुकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करहि बड़ भागै, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए हुवै सो होए, करुणा हर पछाणा सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजै तिसमाहि समाए, ओए सुख नदान उन्हों बने आए। आपस को आप दीनो मानो, नानक प्रभ जन एको जानो। सलोक सर्व कला भरपूर, प्रभ बिरथा जानन हार, जाकै सिमरन उदरियै, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गार्डन हार गोपालो, सर्व जिया आपे प्रतपालो, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए, जिसु प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल कट सोहै, धनवंता होए क्या को गरबै, जान सब किस तिसका दिया दरबै, असुरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को होए बह दातारू, तिस दिन हर जानै गवारू, जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग। जो मंदिर को थामै थमण, त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमण। जौ पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस तरै। जो अंध कर दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए मिगास। ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिलाईऐ, पुरब लिखे का लिखिया पाईऐ। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग दूत सच तार, जो कछ करै सोई सुखमान, भूला काहे फिर अजान। कौन बस आई तेरा सा